0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतने नीचे थी, आके पक्का भी हो गया? की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਫੁੱਲ ਘਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मजा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

हाय ऑस्ट्रेलिया, हाय मेलबर्न, मैं आपका माधवन बोल रहा हूँ यानी कि मैडी, और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM।

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: और जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। हुन तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
4: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
5: रेडियो हांजी 1674 AM।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी बखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी बखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला, दिल नु छू जान वाली अते रूह नु हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
3: देखो सच बता दो।
4: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनु सच्ची कुछ नहीं पता।
2: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधू। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नु तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साला तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: रेडियो हांजी 1674 AM।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपने टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरी बी टोयोटा दे नाल
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431 465 186 ते 212216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस
2: This station is now the ultimate power in the universe.
3: Radio Haji 16748.

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: अज दा विचार अज दी कहानी हर रोज तुसी सुन दे हो शो हांजी मेलबर्न विच तुहाडी डिमांड उते आओ एक बार फिर सुन दे आ इस हफ्ते दी एक बेहतरीन कहानी
1: रेडियो हांजी 1674 आस करदे दिन तुहाडा वधिया जा रहा होएगा समां चुका अज दी कहानी दा दफ्तर दे विच काम करदे आ अचानक घर तों फोन आउंदा नानी चली गई मां ने रोंदे हुए दस्या तू किन्नी कु छेती आ सकदा नानी दा संस्कार करना कुछ पल दे लई जिदा बिल्कुल सारा कुछ खलो गया होवे मैनू तां याद ही नहीं सी कदी इह वी हो सकदा मेरे तां बड़े प्लैन सी नानी नूं लैके सोचदा सी उहनूं आस्ट्रेलिया घुमाऊंगा पर उस तों पहलां उहदे गोडे वी पौणे वार वार कहिंदी हुंदी सी तेरे विआह दे उत्ते खूब भंगड़ा पाउणा भंगड़ा तां ही पैंदा ना गोडे चलदे होण पहलां तां शायद मैं पैसे इकट्ठे करदा रहा कि उहदे गोडे पवा दूंगा पर हुण तां पैसे वी बहुत सी पता नहीं क्यों नहीं जा पाया किहड़ी चीज़ ने रोकी रख्या किन्ने बन्नी रख्या अज सारा कुछ याद आ रहा जिहड़ा नानी दे नाल बचपन च करिया करदे सी वह गल्लां वह नानी दा प्यार वह गोदी दा निग सारा कुछ याद आ रहा वार वार फोन ते कहिंदी हुंदी सी एक वारी आके मिल जा पर मैनू पता नहीं क्यों लगदा सी नानी ने ले किथे जाना इत्थे ही आ पहलां आपां थोड़ी तरक्की ते कर लईए पहलां होर अपने कारोबार नूं अगे तोर लईए उस तो पहला मन च सी कि पढ़ाई कर लिए पक्या हो लिए यह सफर नहीं मुका पर नानी मुक गई काली काली दे विच टिकट लैण दी कोशिश की पर जांदे नूं नानी दा संस्कार हो चुका है मां दे नाल नानके पिंड पुजा ते भज के नानी दे कमरे च जा वड़िया नजरां कुछ भाल दियां सी मां नूं आवाज मार के पुछया मां इधरले पासे नानी दे बेंच दे उत्ते एक बॉक्स पिया हुंदा सी तुहानूं याद है नानी किसे नूं हथ नहीं लाउण दिंदी हां हैगा तां सी इत्थे किते हुणा झात मार ला सारे वेखण दे उत्ते नहीं किते मिलिया आखिरकार असीं नतीजा कढ़िया घर काफ़ी आवाजाई रही किसी ने उत्ते थले करता होना हो सकता कोई लै गया होवे कोई किसी ने गल नहीं गौली पर मेरी सुई उत्थे अड़ी आखिरकार की सी उस बक्से दे विच

0: करके रख लिया। पर इहदे नाल संबंधित नानी दी गल फिर याद आई जांदी, ये बक्सा हैगा तेरे लिए है। मेरे लिए क्यों सी? नानी कितें मेरा तो इंतजार नहीं करती, कितें मेरा समा तो नहीं चाहिए उन्हें, वह समा जिहड़ा मैं नहीं दे पाया। वार वार बड़े सवाल मन दे विच घूमी जांदे ने। नानी तो इलावा घर दे विच होर भी तो बड़े जी ने, उन्हां नूं भी तो मेरी जरूरत होगी, हो सकता उन्हां नूं भी मेरा टाइम चाहिए होवे। तो उस दिन मन दे विच फैसला किया कि हुण मैं छेती जाया करूँ, हुण मैं अपणियां नूं टाइम दिया करूँ, समा दिया करूँ। किसे इसे तरह ये बक्से ही ना पार्सलों दे विच पहुंचन। कई बार सानूं लगता है कि साडे कोल बिल्कुल भी समा नहीं हैगा, जे सोचिए तो समा ही समा। हर रोज़ सानूं नवा समा मिलता, सौण तो बाद जदों आपां उठदे हां तो फिर एक नवा दिन तो नवा समा। पता नहीं वो समा कित्थे चल जांदा, कित्थे आपां खर्च दिंदे हर रोज़ वो समा। तो जिथे भी खर्चते हैं वह जगह सानूं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है, बहुत इंपोर्टेंट लगती है। कभी सोचा ही नहीं कि शायद इस समय की किसी होर भी लोड़ होगी, साढ़े घर के जिया भी शायद जरूरत होवे, कोई साडा इंतजार कर रहा होवे। चंगी तरह सोच के जिथे तुहानूं ज़्यादा जरूरी लगता उत्थे अपने इस समय को खर्चो। पर अपनी उस लिस्ट के विच्चों, इन्हां जरूरी कामां दी लिस्ट के विच्चों अपनी जिंदगी दे कुछ खास किरदार ना मिस कर दिओ। आस करदे हां कि अज दी कहानी तुसीं पसंद कीती होएगी।
1: धन्यवाद कहानी सुनन लई। जे तुहाडे कोल भी है अजिही ही कोई मोटिवेशनल अते इंस्पायरिंग कहानी तां तुसीं सानूं मैसेज या ईमेल कर सकदे हो। जे कहानी वधिया लगी तां रेडियो हांजी दे यूट्यूब चैनल तों इस नूं जरूर शेयर करो अते होर भी कहानियां विचार खबरां अते इंटरव्यू सुनन लई सबसक्राइब करो रेडियो हांजी दा यूट्यूब चैनल।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी नहीं हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हाँ जी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji. Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji.

हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।

0: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नु छू जान वाली अते रूह नु हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
1: देखो सच बता दो।
2: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनु सच्ची कुछ नहीं पता।
0: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधू। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नु तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
3: इतिहास जो सानू जो

0: सिडनी वाले तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM।
1: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउन दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।

0: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे लव यू ऑल भावनाओं को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनना होना चाहिए। हांजी हांजी, अभी ना कहना ना जी ना जी।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: बात करके तो तसल्ली कर रहे हैं कि कहीं कोई सांस बाकी तो नहीं रही।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: और जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरिस पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो,
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: हेलो, मैं हूँ सनी देओल और आप सुन रहे हैं हांजी 1674 AM।

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून
2: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला दिल नु छू जान वाली अते रूह नु हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला
3: देखो सच बता दो
4: मैं झूठ नहीं बोल रही मेनू सच्ची कुछ नहीं पता
2: स्टारिंग एमी विर्क रूपी गिल अते हिम्मत संधु पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नु तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच
5: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਯੁਵਰਾਜ ਹਨ ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1604

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून।
2: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला, दिल नु छू जान वाली अते रूह नु हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
3: देखो सच बता दो,
4: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनु सच्ची कुछ नहीं पता।
2: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधु। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज़ होवेगी 29 मई नु तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
5: जवाब हमेशा चढ़ती कला।

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
3: हां जी रेडियो।

तेनू ओदे नाल मिलाउन आया सी, मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउन आया सी, मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउन आया सी।

0: मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेरी बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

0: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नु छू जान वाली अते रूह नु हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
1: देखो सच बता दो,
2: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
0: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधू। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नु तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून.
2: दिस स्टेशन इज नाउ द अल्टीमेट पावर इन द यूनिवर्स.
3: रेडियो हांजी 16748.

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: हांजी हे मैन सच बी रोजला गीत MP3
2: सारा शहर हमें लॉइन के नाम से जानता है मोना डार्लिंग

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June.
2: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो
3: और जो हुकम मेरी सरकार
2: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे
3: आहो जी आहो
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच
4: तीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो
5: सत श्री अकाल शुभ बोए बादशाह ते तुसी सुन रहे हैं 1674 AM रेडियो हां जी

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हेलो, सत श्री अकाल जी, मैं आपकी प्यारी सी लल्ली और आप

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाय, दिस इज उमंग कुमार और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। कीप लिसनिंग।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
0: लादे फिर
3: हांजी हांजी ओए हांजी हांजी
4: हांजी रेडियो।
5: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
6: और जो हुकम मेरी सरकार।
5: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो।
6: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच।
5: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
6: आहो जी आहो
5: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टंच विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: हेलो वाई नहीं आ रही
1: अपा पहाड़ा दे उत्ते नेटवर्क ता थले आ दे दांगे पैसे तेरे मार थोड़ी चले आ दे दांगे पैसे तेरे मार थोड़ी चले आ दे दांगे पैसे तेरे
2: मार थोड़ी चले आ।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला दिल नु छू जान वाली अते रूह नु हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला
1: देखो सच बता दो
2: मैं झूठ नहीं बोल रही मैनू सच्ची कुछ नहीं पता
0: स्टारिंग एमी विर्क रूपी गिल अते हिम्मत संधु पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नु तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच You are listening.
3: Haji Haji, Haji Haji, Haji Haji. Radio Haji.
4: Radio Haji. 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
3: Radio Haji.
0: Stay tuned.

0: सिडनी वाले तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM।
1: अज दा विचार अज दी कहानी हर रोज तुसी सुनदे हो शो हांजी मेलबर्न विच तुहाडी डिमांड उत्ते आओ एक बार फिर सुनदे हां इस हफ्ते दी एक बेहतरीन कहानी
2: रेडियो हांजी 1674 आस करदे हां दिन तुहाडा वधिया जा रहा होएगा। समा हो चुका अज दी कहानी दा अज दे विचार दा। कहिंदे ने एक वारी एक पहलवान सी जिहनूं अपने आप दे उत्ते बहुत माण सी, जवानी अपने पूरे सिखरां दे उत्ते, मेहनत भी बहुत की, रज के मेहनत की, दब के घ्यो खादा, अलग अलग उस्तादां दे कोलों जाके पहलवानां दे कोलों जाके दा पेच भी सीखे। एक मौका इदां दा आया कि आस पास पूरी तूती बोलदी, अजे तूती बोलदी ही कि किसे कोलों भी ये पहलवान हारिया नहीं, काफ़ी लम्मा समा हो गया। तो सारे जाने इस चीज़ दे भाई दावा कर दे कि बड़ी हलीमी वाला बड़ी धीरज वाला पहलवान है, किसी के नाल किसी किस्म की कोई चढ़ो खती नहीं करता। पर हौली हौली जिदा जिदा प्रसिद्धि मिलती गई उदा उदा होर ज्यादा सरूर आने लग पाया, अपने डौलिया के उत्ते पट्टा के उत्ते माण हो गया। उन्होंने लगता सी कि मैनू हुण कोई भी ढा नहीं सकता, तो सच ही लगता है जिथे भी जाता उथे भी कोई अगे ना खड़ता, दूर दरेडे जाके कुश्तियां लड़ता। तो अज एक जगह दे उत्ते कुश्ती लड़न दे लई पहुंचा, लगातार एक तो बाद एक पहलवाना नूं हराया। पटके दी इस कुश्ती दे विच एक अजाब मौका आया जदों बांह चुके ऐलान किया कि है कोई इस मैदान दे विच, कोई आस पास वेखण वालियां दे विचों इस भरे मेले दे विचों जिहड़ा मेले मेरे नाल कुश्ती करना चाहे, मेरे नाल घोल करके वेखना चाहे। तो कहिंदे ने सारे मेले दे विच जिदां दिओ फिर गया होवे, सारे मेले दे विच चुप चान हुण इहदे अगे खड़े ते खड़े किरा। एक बजुर्ग जिन्हें कुछ एक नौजवानां नूं उत्साहित किया, ओए भल्यो हार जाओ ते लख वारी हार जाओ, ओए तुहाडे पिंड दे विच आ के तुहानूं इह वंगारदा। एक वारी उठ के ओ खड़ता जाओ, ओए मर्दां दे विच ते आ जाओ। पर जिवें सारे जाणदे ही इहदे नाल घुलना लत्त बांह तड़ाउण दे बराबर है, क्योंकि जदों आप ही बंदा इह गल कह दे ना कि है मेरे कोई बराबर, तो फिर उहदे विचों खेड भावना कई बार खत्म हो जाती है, सिर्फ बदलाखोरी रह जाती है कि कोई उठा किवें, मेरे मेरे बराबर उठा तो उठे किवें। किसी पासे किसी नूं ना उठता वेख के इस बजुर्ग ने हाथ खड़ा कर दिता। पहलवान दे नालों उम्र दे विच तीन गुणा नहीं ते दुगने तो ते वधेरी उम्र दा होगा। इस नौजवान पहलवान दे प्यो दी उम्र दा एक व्यक्ति हाथ खड़ा करके मैदान दे अंदर आउंदा। हुण पहलवान नूं वक्त पै गया, मना करे ते तां मरिया, घुले ते तां मरिया, पर हुण कह चुका है, चैलेंज भी लैणा पैणा सी ते मैदान दे विच गल्लां होणियां शुरू हो गईआं। इह जिहड़ा बजुर्ग मैदान दे विच उतरिआ ना इह एवें नहीं आ, ये भी अपने समय का एक चोटी का पहलवान है, अपने समय के मुताबिक यह भी एहो एहो जे दापे च मारदा सी कि वड्डियां वड्डियां नूं हत्थां पैरां दी पा दिंदा। इहनूं भी हल्के हत्थीं नहीं लिया जा सकता। अज मजा आवेगा मुकाबला वेखण दा, एक पासे उम्र भर दा तजर्बा ते दूसरे पासे जवानी दा जोश। जिहड़े लोग मेले दे विच इधर उधर तुरे फिरदे सी वह भी सारे हुण इकट्ठे हो गए ने, वेखना चाहते ने कि आखिरकार जितदा कौन है। तो पहलवान के मन के चल रहा कि इन्हें जो जुरत की है मेरे खिलाफ खलोन की, कुछ इदा करा कि अगे तो कोई मेरे सामने खड़े ना। कुश्ती का मुकाबला शुरू होया, एक तो बाद एक दोवे ने दा मारने शुरू किए। बहुता चिर नहीं लगा नौजवान पहलवान ने इस बजुर्ग नूं पटक के मारिया, इहदियां गोडियां लवा दित्तियां। लगनियां भी ही उम्र का काफ़ी ज़्यादा फर्क सी, तो वैसे भी पहलवान अपने पूरे जोरां दे उत्ते, ते एक पासे बजुर्ग हड्डियां गोडे भी दुखते ने, ते होर पता नहीं की बीमारियां। सारे मेले दे विच सन्नाटा छा गया। चार छफेरे पिंड दे विच जिन्ने भी लोग बैठे ने, जिन्हां नूं ये तांग सी वेखीए की हुंदा, किसी के हत्थां चों ताड़ियां नहीं वज्जियां, किसी के मूँह चों कोई बोल नहीं निकलिया। वो लोग जिहड़े इस नौजवान पहलवान के संगी साथी ही, नित दा कट्ठा खाना पीना ही, वो भी शाबाशी नहीं दे पाए। आखिरकार होया कि पहलवान मन ही मन सोच रहा कि ये उही मेला जिहदे विच मैं एक तो बाद एक पहलवान नूं सवेर तो ढौंदा आ रहा, तो ये लोग किलकारियां मार रहे ही, मैनू मोढ़ियां ते चुक के पिंड दे विच घमाउंदे ही, गेड़ी लवाउंदे ही, ते थब्बा पैसियां दा इकट्ठा हो जांदा है। ये होया कि बाकी तो चलो ठीक है, ये जिहड़े मेरे नाल आए ही मेरे संगी साथी, इन्हां दे मूँहों भी कुछ नहीं निकलिया, ये भी भज के पिंड दे विच नहीं आए, इन्हां ने भी कोई ताड़ी नहीं मारी। समझ नहीं आ रही कि होया की है। मन ही मन सशो पंज दे विच पिया, ते उत्थे उसी जगह दे उत्ते पिंड दे विच बैठा रहा, उठन की भी हिम्मत नहीं हुई। चार छफेरे ध्यान मारदा, सारे लोग जिदा सुन हो इस पहलवान वाल वेख रहे ने, जे महसूस कर पावे तो अखां दे विच नफरत है। वो वाला प्यार नहीं रहा जो सवेर का यह बटोर रहा है। उधर बजुर्ग नूं आके कुछ लोगों ने उठाया, पुछया ठीक ठाक पानी धानी पुछया। इस पहलवान वाल किसी का कोई ध्यान नहीं, सारे इदां कर रहे ने जिदा मैदान दे विच होवे ही ना। ते इस नौजवान पहलवान नूं लग रहा ते हैगा भी इदां ही आ कि ये बजुर्ग ढट के भी अज उहदे तों जित गया। चाहे नौजवान ने थोड़े जे समय दे विच इहनूं हरा दिता, इहदे पैर नहीं लगन दिते, पर इस मुकाबले दे विच जेतू वह बजुर्ग रहा। पहलवान नूं हाले भी पूरी समझ नहीं आई कि होया ते होया की। लीड़े कपड़े पाए ने ते आखिरकार की वेखदा, वह बजुर्ग इहदे वल नूं तुरिया आउंदा जिहनूं इहने ढाया सी, आके शाबाशी दिंदा, भविख दे लई सोहणियां कामनावां करदा, ते जाण लगे नूं पहलवान ने आवाज मार के रोक लिया। बजुर्गो एक चीज़ नहीं मैनूं समझ आई, तुहाडा भी उम्र भर दा तजर्बा, जदों मैं तुहाडे पिंड च तुहाडियां गोडियां लवाईयां, ते एक चीज़ तो मैं समझदा कि तुहाडी ममता बड़ी है, तुहाडी इज्जत बड़ी है, कोई भी नहीं बोलिया। पर मैनूं समझ नहीं आउंदी कि मेरे संगी साथी भी क्यों नहीं बोले। जदों दा मैं कुश्ती जित्तिया, मेरे तो उरे परे भज्जे फिरदे ने, मेरे लागे भी नहीं लगदे। बजुर्ग ने मोढ़े ते हथ धर के कहा, काका आप तो माड़े नूं जदों हराईदा ते फिर लोकां दी वाह वाही नहीं मिलदी। इहो ही एक उणताई मैं तेरे विच वेखी है। चाहे किन्ना भी जोर होवे, किन्नी भी तुहाडे च पावर होवे, किन्ना भी पैसा होवे, कदी भी उहदे ते हंकार नहीं करीदा। ते दूसरी गल, तुहाडे दुश्मन भावें जित जाण पर तुहाडे यार दोस्त कदी हारने नहीं चाहीदे। अगे तो जिंदगी दे विच हमेशा ये पल्ले बन के रखी। एक तो फिर वारी दोहराउणा कि तुहाडे दुश्मन भावें जित जाण पर यार दोस्त ना कदी हारन। इहदा की मतलब बजुर्गो, अज तेरे नाल जिहड़े संगी साथी ही ना, तेरे दोस्त ही, उन्हां नूं बाहर बैठे बिठाए तू हरा दिता। ਇਹ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵਾਹ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਤੇ ਸੀ ਇਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਾਮ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਖੇਡ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹ ਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹ ਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਚੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਖੇਡੋ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ
1: ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇਨਸਪਾਇਰਿੰਗ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕਹਾਣੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਦਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: हां जी हां जी ओए हां जी हां जी
3: हां जी रेडियो

0: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
1: देखो सच बता दो।
2: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
0: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधु। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
3: You are listening.
4: Haji Haji, Haji Haji, Haji Haji, Radio Haji.
3: Radio Haji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
4: Radio Haji.
3: Stay tuned.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
0: यार तू इत्थे नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हुन थोड़े मोड़े नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
4: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
5: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
4: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
5: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच,
4: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
5: आहो जी आहो,
4: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच भी तुहाडी सेवा विच।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस
2: This station is now the ultimate power in the universe.
3: Radio Haji 16748.

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर,

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर स्टंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर स्टंच विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, this is Imran Hashmi and you're listening to me on Radio Haji.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मजा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हाँ जी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: Man is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 16748.
2: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: हाँ जी, स्विंग ग्रोवर, स्विंग ग्रोवर। हाँ जी, हाँ जी, 1674 ये नहीं है 71-72, ये है 1674, ये है 1674। सुनते रहो, सुनते रहो। हाँ जी, AM
5: From India to Miami to the whole world, go ahead and slow it down, girl.

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: You are listening
3: Haji Haji Haji Haji Haji Haji Radio Haji
2: Radio Haji 1674 AM 24/7 Indian Radio Sydney ka apna Indian Radio Station
3: Radio Haji
2: Stay tuned।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

स्वागत है दोस्तों तुहाडा अज दी कहानी अज दे विचार दे विच। अज दी कहानी जिहड़ी लिखी है हरप्रीत सिंह जवंदा ने ते साडे नाल कुमन साहब ने इहदी सांझ पाई सी कि किवें आपां अपने मन दे विच कई वारी भरम भुलेखे पाल लैंदे किसी दूजे दे प्रति, किसी बिजनेस प्रति, किसी अपने प्रति या कदी किसी पराए दे प्रति। पर असी जानते ही नहीं कि इंसान शायद साढ़े लिए चंगा भी सोच सकता कर सकता। पहला ख्याल ही साडा इहो आउंदा कि उन्हें मेरा माड़ा ही सोचा होना, मेरा माड़ा ही कीता होना, मेरे बारे माड़ा ही बोलिया होना। इसे चीज़ की गवाही भरती अज की यह कहानी।

बापू बूटा सिंह, 70 साल की उम्र, गली दी नुक्कर ते कम, पंगा रंगना, पीको, सिलाई कढ़ाई का कम, ते हर तरह की मशीन की भी आसानी नाल रिपेयर कर देनी। उन्हां दे हाथ दे विच बड़ा हुनर सी। ते दूजे पासे मेरी अपनी दुकान, नवी खोली हट्टी, जड़ी गली दे अंदर किन्नी जाके सी। गली दे अंदर कोई आउंदा ना ते सारी गाकी बूटा सिंह कोल चल जांदी। मैं उड़ीकता रहिंदा गाहक ना आउंदे। मैं सोचदा अक्सर कि जे इदां ही चलदा रहा तां खर्चे किदां पूरे होणगे। बापू जी अक्सर ही लंघदे ते मेरी हट्टी ते खलो जांदे सी। आख्या करदे, रमेश पुत्र काम किदां चलदा तेरा, कबरां वी ना, हर धंदा थोड़ा टाइम मंगदा, रातों रात कुछ नहीं बनता, होर भी किन्नियां नसीहतां दे देनियां, होर भी किन्नियां सलाहां दे जानियां। ते मैं शक करी जाना कि बापू बूटा सिंह मेरा हाल पुछण नहीं आया, ये सगों अंदर पईयां चीज़ां वेखण आउंदे। मैं सोचता कि जिन्ना चिर बूटा सिंह जिउंदा शायद मेरी ग्राहकी कदे नहीं वधनी फुलनी, जां फिर बूटा सिंह बस देखण ही आउंदा किहदे कोल किन्ने क गाहक ने, अज की करी जांदा। चलो दिन लंघदे गए। एक दिन सवेरे आके दुकान खोली तां रौला पै गया कि बापू बूटा सिंह चढ़ाई कर गया। मूँह मत्थे लगदे सा ते मैं भी अपनी अदन दुकान बंद करती। उहदे घरे पहुंचया, विछी हुई दरी ते जरूरत तो वध लोग बैठे सन उहदे घरे। मैं भी जाके दरी ते बह गया। वकील ते कागज पत्र चुकी किन्ने सारे लोग, मैनू अंदाजा हो गया सी कि हुण इत्थे वंड वंडाई दा रौला है। चलो अखीर अंतम संस्कार मगरों बापू बूटा सिंह दी दुकान नू ताला लग गया। मामला अदालत च पहुंच गया कि बापू बूटा सिंह दी दुकान किनू मिले। इस कारण मेरी ग्राहकी जरूर वध गई। हुण असनी नहीं सी चाहिदा पर अंदरों मैं बड़ा खुश सा, रब ने मेरी सुणजू लई सी। उधर एक दिन दो बीबियां दुकान ते आईयां, चुन्नियां रंगण, उन्हां दी आपस दी गलबात मेरे कन्नी पै गई। गल्लां कर दियां सन कि बापू ठीक कहिंदा सी, जे मैनू कुछ हो गया तां मेरे मगरों रमेश दी हट्टी ते चले जाया करियो, वो भी मेरा पोती है, उस दे भी कम दे विच बड़ी सफाई है, नाले नवा नवा कम है, निक्के निक्के जवाग ने उसते। ये सुन के तां जिद्दां पैरां दे थले जमीन बची हुई नहीं। अपनी घटिया सोच ते बड़ी शर्म आई। सोचन लगा कि बापू दे घरे पई लड़ाई की वजह भी शायद मैं ही सा, क्योंकि बापू अपनी सारी जायदाद तो मेरे ना कर गया ते जांदा जांदा मेरे बेड़े इदां दा बूटा ला गया जिहदे फल शायद पता नहीं मेरियां किन्नियां पीढ़ियां ने खाने नहीं हले। इस घटना नूं काफ़ी साल हो गए ने,
ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦ ਪਈ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਦਾ ਤਾਂ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਪਗਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੇਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੁਰ ਗਏ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁਭੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਉੱਗਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਖਰੇ ਵੀ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ ਜਾਂ ਉੱਜੜ ਜਾਓ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਈ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਈ, ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ, ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ ਨੇ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा भी लव यू ऑल भावनाओं को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुन रहे होना चाहिए। हांजी हांजी कभी ना कहना हांजी ना जी।
2: मेरी हाय हाय गोली मारे अखियों से हाय हाय।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1600 ਚੌਕਰ।

0: This is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए, लेकिन हंसते रहिए.
1: This station is now the ultimate power in the universe.
2: Radio Haji 1674 AM.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: Om Shanti, and a very warm welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Happiness Index को जब देखते हैं आप समझ में आ रहा है कि वो कैसे ऊपर नीचे हो रहा था. ये भी समझ लिया हमने कि टेक्निक क्या है, कैसे उसे स्टेबल रख पाएंगे. बिलीफ सिस्टम्स को बदलने की बात थी, वो भी बहुत कुछ समझा. आगे और बढ़ाते हैं अपनी बात को. और जब हम बात कर रहे थे कि ट्रैफिक कंट्रोल, हर एक घंटे बाद कुछ देर अपने अंदर जो बच्चा है जो इधर उधर कहीं भाग जाता है उसे पूछें वो ठीक है, उसे कोई परेशानी तो नहीं हुई या उसका जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो बरकरार है. तो आज बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं. हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सत्य शिवानी. ओम शांति.
1: ओम शांति.
0: आपका हैप्पीनेस इंडेक्स तो हर बार ही स्टेबल होता है, बट बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं. आपसे शुरू करते हैं, कभी आपके साथ भी ऊपर नीचे होता है?
1: ऑफ कोर्स, एवरी डे आई थिंक कुछ ना कुछ बातें तो आती हैं जैसे. लेकिन अब क्या है, सिर्फ इजियर है. पहले मुश्किल था एंड दैट्स द जर्नी कि वो डे बाय डे इजियर होता जाएगा. अवेयरनेस ऐसी चीज नहीं आज सोचा आज हो गया. बिकॉज वट एवर वी आर डिस्कसिंग हियर ये डीप चीजें हैं और हमारे बहुत डीप रूटेड संस्कार हैं जिनको हम ऊपर ऊपर से नहीं ठीक कर सकते. कई बार ऐसा लगता ठीक हो गया, यू नो यू से ओके ये प्रॉब्लम थी मेरी सोचने के तरीके में, मैंने एक दूसरी थॉट क्रिएट की, ठीक हो गया. लेकिन आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज इट हैज क्रीप्ड अप अगेन. ये कहां से ये वैसे वाली थॉट्स फिर से आ रही है. इट्स जस्ट दैट नाउ फोकस इज वेरी क्लियर. उसमें कंफ्यूजन कभी नहीं होता कि दूसरा ठीक होगा तब मेरा मूड ठीक हो जाएगा. आई एम नॉट वेटिंग फॉर दैट. मुझे ये पता है कि ये मैं खुद क्रिएट कर रही हूं और जितना जल्दी डिसाइड करूंगी तो उतना जल्दी उसको ठीक कर लूंगी. सो आई ऑलवेज जस्ट हैव टू स्टॉप एंड टेल माई सेल्फ कब तक का प्रोग्राम है इस हालत में रहने का. थिंक अबाउट इट, कितनी देर तुम्हें इस तरह से कंफ्यूजन में, दर्द में, हर्ट में रहना. And then, you know, that question itself says, okay, fine, I know I was going on the wrong track. And you stop and you say, ध्यान रखना शुरू कर दो. जैसे हमने पहले भी देखा कि let go करना है. जो पकड़ा हुआ है उनको जल्दी जल्दी छोड़ते जाओ. जितना देर पकड़ के रखते हैं उतना फिर छोड़ना मुश्किल होता है. इसी तरह एक और चीज का जो हम ध्यान रख सकते हैं and that is let be. Let people be the way they are. अगर आप एक दिन चेक करो या एक घंटा भी चेक करो, हमारा माइंड बहुत ज्यादा औरों के जीवन में इंटरफेयर करता है. मतलब कोई इसके पास कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन मन को एक आदत पड़ी हुई है औरों के जीवन के बारे में सोचने की. तो लेट एवरीवन, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं, लेट देम बी एंड यू नो स्टॉप इंटरफियरिंग इन पीपल्स लाइव्स. उन्होंने मांगा नहीं है हमसे हमारा ओपिनियन. और ये ओपिनियन जरूरी नहीं हम शब्दों में दे रहे होते हैं, हम अंदर ही चल रहे होते हैं. राइट फ्रॉम अ पर्सन, यू नो यू सी अ पर्सन एंटरिंग, हम उनकी लुक्स पर क्रिटिकल हो रहे हैं, हम उनकी ड्रेसिंग सेंस पर क्रिटिकल हो रहे हैं,
0: बिहेवियर पर, उनके बिहेवियर पर, यू नो लाइक कैसे वो बात कर रहे हैं, हर चीज पे हम जो है वो
1: कॉन्स्टेंटली. तो क्या होता, एक एक मोमेंट, जैसे हमने देखा इट्स वन मोमेंट, माई लाइफ इज अ सीरीज ऑफ मिनट्स, एक एक मिनट ऐसे पास हो रहा है. अब जितने मोमेंट्स हम औरों के बारे में सोच रहे हैं उतनी देर हम अपने बारे में
0: नहीं सोच रहे हैं
1: और हम फिर उनके बारे में सोच रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. एंड वेन एवर वी थिंक और डू समथिंग विच इज नॉट इन माई कंट्रोल, वो मेरी एनर्जी को वेस्ट करता है. लेट्स से कि मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा ब्रिक है, अभी मेरे में उतनी ताकत नहीं है उसको तोड़ने की, लेकिन मैं उसको तोड़ने की कोशिश करूं तो वो टूटेगा नहीं. आधा घंटा, एक घंटा ट्राई किया, लेकिन आफ्टर दैट हाउ विल आई फील, मेरे को बहुत थका हुआ फील होगा. क्यों? क्योंकि मैंने एनर्जी बहुत लगाई वो काम करने में जो कि मेरे से हो नहीं सकता. तो दिस वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये एक एक थॉट हमारी एनर्जी कंज्यूम करता है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी. तो इसके लिए हम हमेशा यही याद रखते कि सारा दिन ड्रामा चल रहा है, हर एक एक्टर अपना अपना रोल प्ले कर रहा है. लेट्स नॉट राइट अदर पीपल्स स्क्रिप्ट. ये जो हम स्क्रिप्ट सारा दिन औरों की लिख रहे हैं, इन्होंने ऐसा क्यों बोला, इनको ऐसा थोड़ी बोलना चाहिए था, ये भी कोई बात करने का तरीका है, थोड़ा सा तो पोलाइटली बोलते, ये नहीं है, ह्यूमिलिटी नहीं है इनके अंदर. वी आर राइटिंग देयर स्क्रिप्ट, दे आर फाइन.

0: वे दे आर, लेकिन हम उनकी स्क्रिप्ट लिखते लिखते हम ये सोचना भूल जाते मुझे क्या बोलना चाहिए था। अब ये लगता है कि बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर आप हर एक सीन में देखेंगे, इवन अ सिंपल थिंग लाइक सपोज बोथ ऑफ अस हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हम किसी बात पर डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कशन बढ़ते बढ़ते एक आर्ग्यूमेंट बनती जा रही है, लेकिन डिस्कस करते करते मेरा ज्यादा ध्यान किस पर होता है कि आप क्या बोल रहे हो, आपको क्या बोलना चाहिए था, आपको क्या नहीं बोलना चाहिए था, आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। तो इट्स जस्ट लाइक अ ड्रामा। आज अगर हम थिएटर देखने जाएं तो ड्रामा स्मूथली परफॉर्म तब होगा अगर हर एक एक्टर
1: अपने पे काम कर
0: रहा है, अपने पर काम कर रहा है। एक बार हम एक थिएटर परफॉर्मेंस देख रहे थे इन विच इट वॉज अ मोनो एक्टिंग, यू नो, एक ही था एक्टर एंड दैट वन एक्टर वॉज प्लेइंग लॉट ऑफ रोल्स। इट वॉज अ वेरी वेरी पावरफुल परफॉर्मेंस, उनके बहुत डायलॉग्स थे उनको जो बोलना था, एंड उन्होंने वो प्ले मतलब अनगिनत बार वो कर चुके थे। इट वॉज अ वेरी वेरी पॉपुलर परफॉर्मेंस, वर्ल्ड वाइड ट्रैवल। अब इस चीज में अगर आप देखें तो उस एक्टर को वो डायलॉग्स तो बाय हार्ट याद होंगे, मतलब बिना एफर्ट के भी वो बोल सकते हैं। और उस दिन क्या हुआ, जैसे ही वो परफॉर्म कर रहे थे तो इन द मिडल ऑफ द प्ले किसी का मोबाइल बज गया, यू नो, एंड दैट एक्टर वेंट ब्लैंक। ही जस्ट स्टूड, ही जस्ट डिडंट नो कि मुझे नेक्स्ट क्या बोलना है। और उनको ऐसा दो मिनट लगा, उन्होंने फिर जैसे यू नो ही जस्ट स्टूड स्टिल साइलेंट। टू मिनट्स के बाद ही सेड सॉरी एंड देन ही सेड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कीप योर मोबाइल्स ऑन साइलेंट एंड देन ही स्टार्टेड हिज परफॉर्मेंस। तो वो देखते हुए जस्ट द थॉट व्हिच केम टू मी इज कि एक्टर अपने रोल पर और अपने डायलॉग्स पर इतना कॉन्सेंट्रेटेड है फुल्ली कि एक छोटी सी डिस्ट्रैक्शन भी और वो अपने रोल और अपना डायलॉग भूल गया। हम सारा दिन अपने जीवन कैसे जी रहे हैं? हम तो अपने माइंड को हर तरफ डिस्ट्रैक्टेड होने दे रहे हैं, हमें अपना रोल और अपना डायलॉग
1: पता ही नहीं है ना,
0: से ध्यान में रहने वाला
1: है, अवेयर ही नहीं है बिल्कुल भी, यू नो,
0: कैसे ध्यान में रहेगा। एंड देन हाउ विल वी गिव आवर बेस्ट परफॉर्मेंस टू एवरी रोल दैट वी आर प्लेइंग, बिकॉज हम तो अपने रोल में है ही नहीं। See, if I'm here, लेकिन मैं अपने बजाय औरों के रोल्स औरों के डायलॉग्स के बारे में सोच रही हूँ, आई एम नॉट देयर इन माई रोल, हाउ विल माई लाइफ बी। एंड फिर सब कुछ करते हुए भी हम कह रहे हैं वो अनुभव नहीं हो रहा, वो जीवन में जो सक्सेस चाहिए वो कैसे सक्सेस होगी। आज एक एक्टर को क्यों अच्छा लगता है परफॉर्मेंस के बाद, क्योंकि वो अपने रोल में अच्छी तरह से इन्वॉल्व था। हम किसी भी थिएटर एक्टर को जाकर पूछ सकते हैं, अगर 2 आवर्स के प्ले में वो सिर्फ औरों के रोल के बारे में सोच रहे थे, हाउ डिड यू एंजॉय योर परफॉर्मेंस
1: टुडे? नहीं होता, कभी भी नहीं होता।
0: यू आर अ थिएटर एक्टर, तो आप एक दिन वो करके देखो। एक तो आप बीच में ही अटक जाओगे आई थिंक इन द मिडल,
1: जैसे हम दूसरे को करेक्ट करने लगते हैं ना, खुद का अपना जो कॉन्सेंट्रेशन है ओ ये
0: खत्म हो जाए।
1: थिएटर में भी हर परफॉर्मेंस से पहले 5 मिनट का साइलेंस रखते हैं, 5 मिनट का साइलेंस रखते, उसके बाद यू नो 1 आवर बिफोर द शो, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, वी जस्ट गो इनटू साइलेंस, हम उसके बाद बात नहीं करते।
0: right.
1: एक पूरा मेडिटेट करने के बाद 5 मिनट तक अपने साथ, देन एक्टर रिमेन्स with oneself.
0: अब जो कुछ, see, I didn't know this, but अगर वो 5 मिनट का साइलेंस करते हैं, वो क्या प्रयास कर रहे हैं कि सारी डिस्ट्रैक्शन से एक्सटर्नल भी इंटरनल भी हर तरफ से हटकर अब आ जाओ सिर्फ और सिर्फ अपने रोल के ऊपर, क्योंकि ओनली देन यू विल बी एबल टू गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस। एंड हम अपनी पूरी परफॉर्मेंस अपना पूरा प्ले कर रहे हैं
1: दूसरों पर डिपेंड कर
0: विदाउट बींग इन द सीन, एंड तब हमें अपने इस प्ले में उतना मजा नहीं आ रहा है जितना मजा आना चाहिए, क्योंकि हम तो अपना रोल प्ले ही नहीं कर रहे। वी आर कॉन्स्टेंटली प्लेइंग समबडी एल्सेस रोल, एंड कहीं ना कहीं शायद हमने अपना रोल ही ये बना लिया कि औरों के रोल के अंदर
1: हमने अपनी अपनी बात डालनी है।
0: अब ये जो हम औरों की स्क्रिप्ट सारा दिन लिखने की कोशिश करते रहते, इसके पीछे कौन सा बिलीफ सिस्टम होगा? व्हाट विल बी द बिलीफ?
1: ही इज रॉन्ग, द अदर पर्सन डजंट नो, आई नो बेटर।
0: सो वन, I can control the other person. ये एक deep belief.
1: Because I'm trying to change, you know, I'm trying to do things better for him.
0: तो लेकिन ये तो मेरा belief है ना कि आप मेरे control में हो, मैं अगर आपको बोलूंगी
1: तो आप करोगे,
0: आप करोगे. So this is a very very deep belief कि लोग मेरे control में हैं.
1: करें, करना चाहिए उन्हें,
0: लेकिन जब हम बोल रहे हैं अब उनको जब हम रोक रहे हैं, टोक रहे हैं या उनके प्रति जजमेंटल हो रहे हैं, थॉट तो यही है ना कि ये सारी दुनिया
1: मेरे कंट्रोल में
0: है और ये सारी दुनिया मेरे चाहने के अनुसार चलनी चाहिए. दिस इज अ वेरी डीप बिलीफ सिस्टम. द वर्ल्ड शुड गो अकॉर्डिंग टू my likes, my desires, and my expectations, and also second belief system, my happiness is dependent on their behaving the way
1: I want
0: them to behave. तो इसलिए अपनी ही खुशी के लिए है, सारा कुछ खुशी के लिए है, अपनी खुशी के लिए औरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं और उस प्रोसेस में अंदर ही अंदर और दर्द क्रिएट करते जाते. सो एक दिन के लिए ट्राई कर सकते हैं. जस्ट राइटिंग,
1: किसी कॉर्पोरेट बॉस के बारे में बात नहीं कर रहे थे हम. आप अपनी जीती हुई, चाहे आप माँ हैं, चाहे आप सबॉर्डिनेट भी हैं,
0: जैसे माँ आपने कहा, एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में ये कंट्रोल का फीलिंग बहुत ज्यादा आता है. इवन एक पेरेंट को किस कॉन्शियसनेस से अपने बच्चों को बड़ा करना चाहिए कि ये आत्माएं हैं जो मेरे घर में आए हैं. मेरा रोल है एक तो इनको फिजिकल प्रोटेक्शन देना, इंटेलेक्चुअल जो भी इनकी ग्रोथ कराना, बाकी मेरा रोल है इनको वो एक एनवायरमेंट देना, इनको वो पालना देना, एंड देन लेट देम टेक देयर लाइफ द वे दे वांट, नॉट लेट देम डू एंड बिकम व्हाट आई वांट. यू नो लॉट ऑफ अस आर ट्राइंग टू मेक आवर चिल्ड्रन what we want. It's not, yes, we are there to guide, but then we are there to guide.
1: तो कितनी बार तो कहते हैं कि अगर तुमने मेरा ही सपना पूरा नहीं किया तो फिर मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ. अगेन वी नीड टू चेक, एक्चुअली
0: इसको चेक करने की चीज है कि उस आत्मा की अपनी जर्नी है, अपने लाइक्स, डिसलाइक्स, डिजायर्स, जो भी सारा कुछ है, अपनी क्रिएटिविटी है. हम सोच रहे हैं वो हमारे थॉट पैटर्न से अगर अपना रोल प्ले करे तो उसकी अपनी क्रिएटिविटी दब जाएगी, एंड दैट सोल विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस, क्योंकि वो अपने थॉट से भी नहीं चल रहा और मेरे थॉट से तो वो कर ही नहीं सकता. सो इवन एज अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हमें एक गाइड की तरह बनना चाहिए ना, एक फैसिलिटेटर की तरह, जो हमेशा है, ऑलवेज अवेलेबल, बट टू हेल्प मी, टू गाइड मी, नॉट टू कंट्रोल में. तो उससे वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बहुत हेल्दी हो जाएगा. लेकिन हम ट्राई करते हैं कि हम हमेशा उनको रोकते हर चीज पे ताकि उनकी लाइफ हमेशा स्मूथ चले. हम कितना भी ट्राई करें, उनके अप्स एंड डाउन्स तो आने ही वाले हैं, बट अगर हम उनको गाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते, तो वो अपने अप्स एंड डाउन्स को तो
1: हैंडल कर,
0: खुद ही फेस कर लेंगे. वी आर थिंकिंग कि हम बच्चों को इतना राइट राइट राइट दिशा पर ले जाएं कि इनके जीवन में कभी कुछ प्रॉब्लम ही ना आए. दैट्स नॉट द वे टू लुक एट इट. इट हैज टू बी हम उनको इतना स्ट्रांग बना दें ताकि जो भी प्रॉब्लम आएगी, जो भी चैलेंज आएगा, दे विल बी एबल टू जस्ट क्रॉस इट. एंड दैट विल ओनली हैपन इफ आई फैसिलिटेट. यू नो एक मेंटर जैसे होता है, एक गाइड जैसे होता है, नॉट अ कंट्रोलर. तो हम पेरेंट्स कंट्रोलिंग वाली जो एटीट्यूड लेकर चलते, उससे हम उसकी क्रिएटिविटी को दबा देते हैं. तो एक दिन ट्राई करेंगे स्क्रिप्ट नहीं लिखने के लिए औरों की,
1: और इसके लिए खुद अवेयर होना पड़ेगा. सी, अब जब हमने अपने ऊपर बात करनी शुरू की है, अपनी हर सोच को देखना शुरू किया है, तब रियलाइजेशन ये हो रहा है कि हम कर क्या रहे हैं. आई थिंक समवेयर हमें ये फीलिंग कि मेरा कंट्रोल है दूसरे के ऊपर.
0: हाँ, सी दैट फीलिंग कि मेरा, अगर हमें किसी को भी बताना भी है, इट शुड बी लाइक दिस इज माय ओपिनियन. यू नो यू कैन टेक इट इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट, इंस्टेड ऑफ सेइंग यू हैव टू डू इट दिस वे एंड देन एक्सपेक्टिंग कि वो करेंगे ही वैसा, एंड देन गेटिंग एंग्री
1: नहीं
0: कर पाते हैं उस तरह से. तो उससे फिर क्या हो जाता है, उनको राइट और रॉन्ग सिखाने के प्रोसेस में हम जब हर्ट हो जाते तो हमारा रोल क्या हो गया. मैंने तो
1: अपने रोल पे तो काम किया ही ना?
0: अपना रोल, अगर मुझे आज आपको देखकर गुस्सा आ गया क्योंकि आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी, लेट्स से यू हैव कमिटेड अ क्राइम एंड मुझे गुस्सा आ गया, तो आपने तो जो भी गलत किया सो किया, वो आपके रोल का. मैंने जो गुस्सा किया, मैंने जो हर्ट क्रिएट किया, तो मेरा रोल भी तो खराब हो गया ना. तो पहले मेरे अपने रोल पर मुझे ध्यान देना, देन आई कैन प्रोबेबली शेयर विद यू और गाइड यू. बट आपके रॉन्ग को क्रिटिसाइज करने के लिए मैंने अपने भी रोल को खराब कर दिया, तो हर एक एक्टर का रोल
1: खराब होता गया ना फिर. हाँ, तभी तो ड्रामा खराब होने लग गया. अच्छा खासा जो है प्ले चल रहा है, उसको अगर हम एक मिनट में खराब,
0: एक नॉर्मल प्ले में भी अगर देखते थिएटर पे, लेट्स से हम अभी उस प्ले में हैं एंड मुझे अपनी लाइंस भूल गई, तो जो बाकी एक्टर्स हैं स्टेज पर उनका क्या रोल होता है?
1: वो कभी भी पता नहीं चलने देते किसी को भी कैसा हुआ, इतना फटाफट डिजाइन कर लिया जाता
0: लेकिन
1: है।
0: लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपने ही रोल पर और अच्छे तरह से कंसंट्रेट करते ताकि उनके रोल और उनके डायलॉग से मुझे वो क्यों मिल जाएगा कि वेयर वॉज आई मेकिंग अ मिस्टेक। दे डोंट स्टॉप एंड टेल मी द लाइन्स, दे डोंट स्पॉइल द हार्मनी ऑफ द ड्रामा, यू सी। तो सिमिलरली अगर कोई मेरे आसपास कुछ गलत कर रहा है, गलत डायलॉग बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू मी गलत डायलॉग, गलत लाइन, सब कुछ, आई कैन जस्ट टेक केयर मोर ऑन माई रोल, यू नो, और भी ज्यादा ध्यान रखे कि आई विल नॉट गेट हर्ट, आई विल रिमेन स्टेबल। तो दैट माइट गिव द क्यू टू द अदर पर्सन
1: कि ओहो मैं भटक गया था, मेरी लाइन तो ये थी।
0: यस, लेकिन जहां वो भी लाइन्स अपनी खराब कर दी, मैंने भी अपनी लाइन्स खराब कर दी, एंड देन ग्रेजुअली हम दोनों ने अपनी लाइन्स को, डायलॉग को पूरी तरह से इतना मेस्ड अप कर दिया, देन दैट सीन बिकम्स वेरी वेरी अनप्लेसेंट, एंड फिर वो ड्रामा हमें पसंद नहीं आता, फिर हम कहते ये जीवन ऐसा क्यों है। तो ये वाली एक पॉइंट कि लेट एवरी वन बी, ये हमें यहाँ सफाई रखने में बहुत मदद करेगी, क्योंकि हम बहुत एनर्जी, और देखो ना हम कितने लोगों की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, एक दो की लिख रहे हों, चार की लिख रहे हों तो भी ठीक है, हम सारा दिन में कितने एक्टर्स की स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करते।
1: उसे ऐसा कहना चाहिए था, हाउ मेनी टाइम्स वी से दैट ही शुड हैव सेड दिस,
0: yeah, is this the way to speak, this is this
1: he
0: what
1: should
0: he should
1: have done this,
0: should have, you know, should have, isn't it? We don't even say he could have said this, no, he should have said this, means
1: this,
0: we'll go,
1: this is what, you know, this is how the world should be.
0: Yeah, why? Because this is the way I would like the world to be. To isko ek homework ke roop se dekhe ki aaj ek din try kare, how do you feel jab aap auron ki script mein इंटरफेयर न करके,
1: लोगों को कंट्रोल एक्चुअली करना बंद कर दे, इवेल्युएट करना बंद कर दे। अमेजिंग, यू नो हाउ वी डू।
0: और ये जितना इजी लग रहा है उतना इजी नहीं है, इसका हमें बहुत, जैसे आपने आज शुरू में भी कहा ना कि आपका ऊपर नीचे होता है कि नहीं, आई हैव सीन सबसे ज्यादा कारण ऊपर नीचे होने का यही एक होता, जैसे ही मेरा फोकस जाता है इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनको ऐसा नहीं, देयर इट्स गॉन, दैट स्टेबिलिटी है। मॉर्निंग में उठे, मेडिटेशन किया, इट्स वेरी नाइस, यू आर एब्सोल्युटली लाइक दिस, एंड देन द माइंड गोज इनटू इनको क्या बोलना चाहिए था, इनको क्या करना चाहिए था, एंड देयर यू गो। अगर आप वो एक चीज पर वर्क कर लो, आपका माइंड ऐसे रहेगा, देयर इज नथिंग एल्स आउट देयर इन द वर्ल्ड जिससे कोई भी डिस्टर्बेंस होने वाली है, ये हम जब हो जाते हैं। सो राइट नाउ आई एम कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू लुक इन दिस, एंड आई कैन जस्ट से इट्स इजी बट रिक्वायर्स लॉट ऑफ अटेंशन, क्योंकि ये बहुत जल्दी स्लिप ऑफ हो जाता है। ये ऐसा संस्कार है कि यू नो वी ट्राई टू रिमाइंड आवरसेल्फ, एंड देन बिफोर वी आर अवेयर 10 मिनट बाद आई सडनली सी ओ माई माइंड इज अगेन थिंकिंग अबाउट समवन एल्स, एंड अगेन वे किसी के बारे में जजमेंट पास कर रहा है, व्हाट अ वेस्ट ऑफ एनर्जी, कम बैक। लेकिन वो करते करते आई कैन सी कि वो परसेंटेज कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, एटलीस्ट मेरी लिस्ट कम होती जा रही है कितने लोगों के बारे में आई एम थिंकिंग, एंड नाउ दैट लिस्ट इज कमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, एंड वी नीड टू फिनिश इट, क्योंकि कोई भी नहीं है जो मेरे कंट्रोल में है। पहले तो क्या हो रहा था, गाड़ी चलाते हुए भी हर एक ड्राइवर के ऊपर भी कमेंट पास हो रहा था, कैसे चला रहे हैं, लाइन में नहीं खड़े, टोल पर खड़े हैं, गलत साइड से ओवरटेक कर रहे हैं, जस्ट थिंकिंग अबाउट एवरीवन, उन्होंने तो फिर भी ओवरटेक करना है, लाइन को तोड़ देते हैं, टैग की लाइन में कैश फर्द, ओ देर इज सो मच टू गेट डिस्टर्ब्ड अबाउट, यू नो, इफ यू अलाउ योर सेल्फ टू गेट सक्ड आउट, there is just too much happening.
1: I think for some time, you know, for some time we need to really focus on ourselves actually, and we should become little selfish.
0: No, very selfish.
1: I keep on saying this because I understand, you know, hum jaisa aapne kaha bahar continuous observe karte rehte hain aur wo hum observe aur hum kehte hain hum to neutral observer hain, lekin hum kitni sari cheeze un par
0: neutral honge to yahan disturbance nahi hoga na, agar aap detached hokar dekho, abhi bhi if I'm standing in the traffic jam I can see people where they are making their mistakes, they're overtaking wrong, but
1: it's not affecting you,
0: create anything here, अभी भी दिख तो रहा ना, आंखें कान बंद थोड़ी है कुछ भी, लेकिन यहां कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, दिस बिकम्स एक्सेप्टेंस, कि एक्सेप्ट करें कि हर एक अपना अपना रोल अपने अपने अनुसार प्ले कर रहा है, एंड दे हैव द राइट टू डू इट, एवरीवन। मेरे अंदर बहुत कुछ है अभी, विच पीपल मस्ट बी सिटिंग एंड थिंकिंग दैट आई एम रॉन्ग, बट आई एम फीलिंग दैट व्हाटएवर आई एम डूइंग इज राइट, तो इसी तरह सामने वाला भी जो कुछ भी कर रहा होगा, इवन अगर वो रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रहा है, लाइन तोड़ रहा है, उसके पास उस टाइम कुछ ना कुछ लॉजिक होगा उसके लिए। और जैसे ही हम ये लेट भी करना शुरू करते, एक्सेप्ट करते हैं सिचुएशन को, लोगों को, कि हर एक अपने अनुसार अपना अपना रोल प्ले कर रहा है, एंड एवरीबडी इज एक्यूरेट इन द रोल दे आर प्लेइंग। यस, इफ समबडी आस्क्स मी फॉर हेल्प, इफ समबडी वांट्स मी टू गेट इन्वॉल्व्ड इन देयर ड्रामा, यू नो, किसी का अपना कोई ड्रामा है एंड समवन सेज यू नो प्लीज गेट इन्वॉल्व्ड ताकि आप हमें हमारे ड्रामा में कुछ हेल्प करो, लेकिन उसमें भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा,
1: हम न्यूट्रल इन्वॉल्वमेंट,
0: लेकिन नॉट उसके अंदर हम इतना घुस जाएं कि उस सीन की, उन एक्टर्स की जो इमोशन है
1: वो हमें हम करने पड़ा जाए, लेकिन वो एक्चुअली होता बहुत कम हो पाता है।
0: क्योंकि क्या होगा, जैसे आपने कहा, अगर इफ योर रोल से यही पेरेंट के रोल है, यही बॉस का रोल है, ये टीचर का रोल है, क्योंकि हमारा रोल है किसी तरह तब कि हम औरों के ड्रामा में थोड़ा सा इन्वॉल्व्ड हैं, क्योंकि हम गाइड हैं, हम फैसिलिटेटर हैं, लेकिन वो रोल कहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब होता, जब वो दूसरे एक्टर के इमोशन हमारे ऊपर ओवरपावर कर जाते। बच्चा दर्द में है, मेरा रोल है उसके साथ बैठना, टू फाइंड आउट व्हाट हैज गॉन रॉन्ग एंड टू शेयर विद हिम व्हाट इज द राइट वे एंड वो कैसे ठीक कर सकता है, कहाँ वो गलत जा रहा है, एवरीथिंग आई हैव टू डू। लेकिन अगर मैंने सेम दर्द क्रिएट कर लिया जो बच्चा है, या शायद मैं बच्चे से भी ज्यादा दर्द में एज अ मदर मैं चली गई, देन समवेयर आई विल नॉट बी एबल टू प्ले माय रोल प्रॉपरली। क्योंकि जब एक बार यहाँ दर्द क्रिएट हो जाता तो वो क्लैरिटी ही खत्म हो जाती कि ये क्यों, क्या, कैसे इसको ठीक करना, इट गोस अवे।
1: लेकिन कई बार हम ये सोचते हैं कि जब हम रोल प्ले की बात करते हैं, सोचते हैं कि बड़ा मैकेनिकल हो गया, यू नो, समवेयर डीप विद इन, बिकॉज वी एंजॉयड इट सो मच, और लाइक वी थिंक अगेन, ये बिलीव सिस्टम है कि यही, ऐसे ही तो जीना है, ऐसे ही मुझे रोल प्ले भी करना है अपना।
0: रोल प्ले करना है, ये मैकेनिकल होने के बजाय क्रिएटिव हो जाता है। मैकेनिकल तो अभी तक चल रहे थे,
1: ऑटोमेटेड।
0: हाँ, और मैकेनिकल क्या होता है, जहाँ चॉइस नहीं है कि बच्चा दर्द में है तो मैकेनिकल है कि पेरेंट ने दर्द में जाना ही है। मैकेनिकल मीन्स ऑटोमेटिक, बटन दबाया और हो गया, उसने गुस्सा किया तो मेरा बटन यहाँ दबा, मुझे उदास होना ही है। दिस वॉज ऑल मैकेनिकल, बट नाउ इट्स बिकम क्रिएटिव कि मेरे पास चॉइस है, वो हर्ट है, मैं स्टेबल भी रह सकती, मैं न्यूट्रल रह सकती, मैं और भी ज्यादा पॉजिटिव होकर कुछ और क्रिएटिव सोच सकती, लेकिन पहले तो कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास, देयर वॉज जस्ट वन चॉइस। एंड तब हम कहते थे अटैचमेंट है तो हर्ट के साथ हर्ट होना नेचुरल है, ये नेचुरल था, एंड वी टुक इट एज अ साइन ऑफ लव कि अगर वो दर्द में है और मुझे भी दर्द हो रहा है, इट इज अ साइन दैट हम बहुत एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं।
1: Somewhere we were actually taking love as attachment.
0: And we even say to each other, I can feel your pain. Parent child के साथ है, बच्चे से कोई गलती हो गई, पेरेंट हर्ट हो गया, कहीं उसकी पेरेंटिंग स्किल पर यू नो क्वेश्चन मार्क उठ गया, तो वो अपने कॉम्प्लेक्सेस में इतना चले जाते हम कि हम बस चाहते हैं कि बच्चा किसी भी तरह ठीक हो जाए। बस वो जो मेरे ऊपर स्टिग्मा लगा है, दुनिया के सामने नहीं, मेरे लिए, अपने लिए कि मेरी पेरेंटिंग पे जो स्टिग्मा लगा है वो ठीक हो जाना चाहिए, इसलिए हम उसको कहते हैं तुम ठीक हो जाओ। यू नो वी डोंट रियलाइज दिस, बट ये इसलिए है, तुम ठीक हो जाओ। वी नॉट रेडी टू गिव इट टाइम टू अंडरस्टैंड वो क्यों ऐसा कर रहा है, उसके पीछे क्या कॉम्प्लेक्स है, क्या दर्द है, क्या सेल्फ एस्टीम हर्ट हुई, कुछ नहीं, तुम ठीक हो जाओ। बस तुम ठीक हो जाओ, क्यों, क्योंकि जब तुम ठीक हो जाओगे
1: तो मैं फिर रीअश्योरेंस हो जाएगी कि
0: मैं ठीक हो जाऊंगा। सो यू नो देन आई एम नॉट प्लेइंग दैट पेरेंट रोल इन द वेरी राइट वे। और जैसे ही हम ये करना शुरू करेंगे, अपना ध्यान रखना शुरू करेंगे, यहाँ बहुत ज्यादा क्लटर नहीं होगा, तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली साइलेंट होता जाएगा। सारे आंसर्स, सारे सोल्यूशंस यहाँ पर है, जिसको हम कहते हैं इंट्यूशन, कि एक ट्यूटर है जो अंदर बैठा है, लेकिन अंदर की आवाज सुनने के लिए ये नॉइज को खत्म करना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, इतनी नॉइज है, वो अंदर से आवाज देता भी है लेकिन हमें आवाज सुनाई
1: नहीं देती, इतनी सारी आवाजों में फिर वो कंफ्यूजन, ये आवाज ठीक है या वो आवाज ठीक थी।
0: आप देखो कितनी बार जैसे जैसे हम इस जर्नी पर है तो अंदर से आवाज आती है, हमें कहते हैं मुझे अंदर से आवाज आई थी कि ये ठीक नहीं है, लेकिन मैंने उस आवाज को क्या किया,
1: अनसुना,
0: मैंने अनसुना किया। क्यों अनसुना किया, क्योंकि कहीं मैंने सोचा कि अगर मैं उस आवाज की बात मानती हूं तो मैं वो करने से अपने आप को रोक दूंगी जिस पर मेरी खुशी डिपेंडेंट है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम एक्सपेरिमेंटिंग विद ड्रग्स और विद स्मोकिंग, और I shouldn't be watching 3 hours of television, I don't have time, but I'm still watching. तो अंदर से ये छोटी छोटी बातें, I'm not talking about the very big ones. कि छोटी सी आवाज अंदर से आएगी, मत देखो या ये मत लो, ये तुम्हारे लिए अभी it's not good. लेकिन I say go away, मुझे खुशी चाहिए. You know, तो मैं उस आवाज को इसलिए इग्नोर कर देती हूँ
1: कि मुझे वो चाहिए,
0: कहीं वो आवाज मुझे मेरी खुशी से ही दूर लेके जा रही है, विदाउट रियलाइजिंग वो आवाज ही मुझे मेरी खुशी तक लेके जाने वाली है, मेरी आवाज.
1: वंस माय डॉटर आल्सो टोल्ड मी कि शी सेज मेरे को पता चल रहा है कि मैं टीवी देख के टाइम वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज कम एंड स्कोल्ड मी मॉम. आई सेड you know, the realization is so much.
0: Yes, it is, but I'm not listening to myself, so I need someone else to come and say it to me. तो क्या होता है जब उसको बार बार दबा दिया जाता तो वो अंदर ही वो दब जाती है, and then when it will come out, वो एक emotional outburst के रूप में आएगी. हमारी conscience जिसको हम कहते, that keeps giving me the signals, and it always gives me the
1: right signal.
0: Always. Now it's just up to me to take that signal. Ignore करते गए, it's like हमें एक बहुत अच्छा teacher मिला है जो हमेशा हमें अच्छा सिखा रहा है, लेकिन मैं उस teacher की आवाज, you know, आवाज को, उसकी wisdom को, क्योंकि सारी wisdom भरी हुई है मेरे जीवन में, मेरे लिए क्या सही है,
1: no, मेरे पास है,
0: मेरे पास answer है. I never need to go and ask anyone else. लेकिन
1: और आजकल हम हर चीज, हर छोटा decision भी, office का decision भी, घर का decision भी 10 लोगों से पूछ के कर रहे होते हैं,
0: because we know not listening. So वो ट्यूटर अंदर बैठा है, उसकी बात को सुने, और जितना सुनते जाएंगे, you know, ये टीचर ऐसा है कि हम उसकी बात को जितना सुनते जाएंगे ये हमें विजडम और भी देता जाएगा,
1: क्लैरिटी और.
0: यू नो, सपोज आप मुझे कोई अच्छी बात बता रहे हो, मैं सुनती ही नहीं, फिर आपने दूसरी बार बताया, मैं सुनती नहीं, चार बार बताओगे
1: आप नहीं सुनाते,
0: पांचवी बार आप मुझे बोलना ही बंद करोगे, तो मैंने ही अपने अंदर जो थी एक इतनी अच्छी चीज उसको मैंने दबा दिया. और अगर मैं बार बार आपकी बात सुनने लग जाऊं तो आप सोचोगे चलो मेरे कहने के अनुसार से ये कर रहे हैं, तो आप और बताना शुरू करोगे और बताओगे. इमेजिन, माई लाइफ विल बिकम वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी ब्यूटिफुल.
1: बहुत सुंदर. तो आज जो हम इस प्रोसेस पे हैं कि हमें करना क्या है, जिन बिलीफ सिस्टम्स को पकड़ कर हम अभी तक बैठे थे उन्हें छोड़ने के लिए हमें सबसे पहले तो लोगों को छोड़ना पड़ेगा, लोगों की स्क्रिप्ट लिखनी छोड़नी पड़ेगी कि लेट बी, एक तो लेट गो, और जो जैसा है उसे वैसा रहने दें, उसके ऊपर चिंतन मत करते रहें कि वो ऐसा कर ले, वो ऐसा कर दे, मेरा टीचर ऐसे कर ले, मेरा हस्बैंड ऐसे कर ले. समवेयर वी नीड टू लेट बी, वो जो जैसे हैं. और दूसरी बात कि जहां हमने अपने आप को साइलेंट करके उस आवाज को सुनना शुरू कर दिया, चाहे इम्प्लीमेंट अभी भी ना करें, यू नो, चाहे मैं तो कहती हूँ चाहे इम्प्लीमेंट ना करो, सुन के उसको रजिस्टर तो कर ले, एट टाइम
0: दबा ना दे उसको,
1: यू नो, उसको रजिस्टर करना शुरू कर दे, यस दिस इज व्हाट आई शुड बी डूइंग, बट राइट नाउ आई डोंट फील लाइक डूइंग, इट्स ओके, बट नेक्स्ट टाइम आई विल लिसन टू यू, यू नो. सो यहां ये प्रोसेस अगर शुरू हो जाता है, उसमें जैसे हमने कहा कि हर एक घंटे के बाद एक मिनट का साइलेंस ये बात की याद दिलाएगा, मेरी आवाज मुझे अपने साथ सुनाता जाएगा. तो ये छोटे छोटे जो प्रैक्टिस है वो हमें करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि फिर हम चाहेंगे कि आपका जो अनुभव है वो आप हमारे साथ शेयर करें. तो कोई बात मन में आ रही है, कोई सवाल है अभी भी है, या इस प्रैक्टिस के दौरान आपको कोई ऑब्स्टिकल है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं, या तो फोन पर या फिर ई मेल पर. हमारे फोन नंबर है 01244-2660-9999-344-555-999-344-666-9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. तो सिस्टर शिवानी, आज की जो पूरी बातचीत रही, बहुत क्लैरिटी से ये समझ में आ गया कि करना क्या है. आप कितना करेंगे यह हमारे ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ये डेफिनेट है कि हम करेंगे जरूर, क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है सब कुछ करना. थैंक यू सो मच ओम शांति. और अब आपसे भी विदा लेते हैं, लेकिन इसी बात के साथ कि ये जो हमें समझ में आ रही है बात, लगता है कि पॉसिबल है, तो लेट्स ट्राई इट आउट ना. पहले भी तो हम इन्हीं बातों को इम्प्लीमेंट करते आ रहे थे. बदला जीवन, आगे और भी बदलेगा, हैप्पीनेस हमारी अपनी प्रॉपर्टी हो जाएगी. फिलहाल आपसे विदा लेते हैं, ओम शांति.

0: ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है। ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8000 से अधिक सेवा केंद्र हैं। राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: टोलिया टोल वजा।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: रेडियो हांजी 1674 AM।

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: रेडियो हांजी 1674 आस करते हैं दिन तुहाडा वधिया जा रहा होएगा चेहरे ते होवेगी मुस्कुराहट जेकर नहीं ते आओ सब तो पहला चेहरे ते खुशी लैके आइए बिल्कुल इसे तरह के नाल इस खुशी नूं अपने चेहरे ते सजा के रखियो क्योंकि सवेरे सवेरे दे समय जो आपां नाल लैके निकलदे आं कहिंदे ने सारा दिन उही साडे नाल रहिंदा उही खट कमा के असीं धूण सवाया करके वापस घर लैके आउंदे आं आओ खुशियां लैके निकलदे आं शामां नूं खुशियां लैके घर परतांगे बिल्कुल इसे तरह के नाल हसदे चेहरे रहन इसे अरदास दे नाल ओह वध देंगे समा हो चुका अज दी कहानी दा एयरपोर्ट ते जाण दीआं तैयारियां सी बैग पैक करदिआं नाल जाण वाले सज्जन दा फोन आया ट्रैफिक बहुत हुंदी है एयरपोर्ट वाले राह दे उत्ते इदां करदिआं घंटा क पहलां निकलदे उहनूं ते हां कर दित्ती पर मन दे विच आई जांदा तू तो सजना वेला मेरे हले छत्ती कम करने वाले पे उही एक घंटा पता नहीं मैं किन्ने कम कर लेने फिर सोचा चलो हाँ कर दिती है कम तो बहुत लैपटॉप का ही है घंटा पहला पहुँच के उत्थे बह के कर लांगे पर पता नहीं क्यों यह फैसला मन चुभी जाता यार एवें एक घंटा इन्हें खराब कर देना ये ज़्यादा ही कुछ हिसाबी किताबी लगता खैर काम अपना सी इस करके बहुता टाल मटोला नहीं कर सकते प्लान के मुताबिक घंटा क पहला चल पे तो ट्रैफिक भी घट मिली आम दे नालों पहले ही एयरपोर्ट के उत्ते पहुँच गए को काल नहीं सी पर फिर भी वह फैसला मन में चुभी जाए हुण एक घंटा पहला पहुँच के दस करना की है इत्थे इन्हें नूं जा टैक्सी वाले ने ब्रेक मारी उतरे तो सामने शटल बस सी नाल दा मित्र कहन लगा बस तुरनी लगी आ मित्रा मार थोड़ी जी दड़ुकी बहुता सोचन दा समा नहीं मिलिया भज के शटल बस दे विच बह गए नाल दी नाल ही बारी बंद हो गई शटल बस तुरी तां मन दे विच विचार आया आ पुल पार करके आ पंजां मिंटां दे विच आपां तुर के पहुँच जाना है भला आपां इह बस दे विच क्यों बह गए हां जदों बस वाले ने थोड़ी जी अगे तुरी तां समझ आई कि इहने ते हले ओ दूरों घुम के आउणा आपां इधरों दी शॉर्टकट मारना ही ते तुर के सिद्धा एयरपोर्ट दे अंदर पहला तो नाल दे ते माड़ी जी पड़ास कढ़ी जरदी जरदी जी उहदे ते पड़ास कढ़ी ते फिर सामने ड्राइवर दे उत्ते ध्यान पै गया पंजाबी होण दे नाते ड्राइवर नूं सत श्री अकाल बुलाई तां नाल ही पुछ लिया वीर तूं ते सारा दिन बड़ा बोर हुंदा होएगा आ इत्थे गोल गोल जिहा घूमी जाणा इदां दी नौकरी ते बड़ी औखी आ करनी यार ड्राइवर ने हल्की जी झाक दिती चेहरे दे उत्ते वड्डी जी एक समाइल लैके आंदी ते कहा नहीं नहीं भाजी इदां दा ते कुछ नहीं तुसीं जाण के शायद हैरान हो गए कि मैं इको गेड़ा ही लाउना वा एक दिन च दूसरे गेड़े दे विच पहलां वर्गा कदी मेरा अभ्यास रहा ही नहीं एक्सपीरियंस रहा ही नहीं सच जाणिओ हर गेड़े दे विच एक वक्री तरह का मैनू एक्सपीरियंस मिलता जो वक्री तरह के लोग मिलते हैं तुहाडे वर्गे हस के बोलते ने अलग अलग तरह के तजर्बे होंगे ने तो फिर मैं सारा दिन कभी लगे ही नहीं कि मैं एको रूट के उत्ते उत्थे के जी घूमी जाना आते तो ही गल कही आ तो मैं सोचन पर मजबूर कर दिता इन्ना कह के हसन लग पे इन्हें लाइटों के उत्ते ब्रेक मारी तो सामने एयरपोर्ट तो निकलता एक परिवार ड्राइवर के लागे बैठे होने के करके उधर इशारा करके कह लगा भाजी वह वेखो आ छोटी जी बच्ची किदा अपनी दादी की बांह फड़ के पार कराउण डई है सड़क एन आनंद आ रहा कि नहीं वेख के एक उम्र सी इस दादी ने किदा खड़ाया होगा गोदी च बिठा के मगर भजी फिरती होनी है यो ही बांह फड़ के वह उन्हों स्कूल छड़न जाती होगी हूँ वह थोड़ी बजुर्ग हुई है तो पोती वेखो किदा उहदा साथ दे रही है शायद तुहानूं भी मजा आया होवे वेख के मैनू तो मेरी दादी याद आ गई इदां दे पता नहीं किन्ने क मैनू सारा दिन एक्सपीरियंस हुंदे आ जे मैं होर किसे काम ते होवां उत्थे शायद मैं बोर होवां पर इत्थे ते नहीं पर सच दसां मैं बड़ियां नौकरियां कीतियां आ जिहड़ा मैं आम सुन लैंदा ना इत्थे बोर हो गए इत्थे जी नहीं लगदा मजबूरी नूं कई नौकरियां छड्डनियां पईआं पर सच जाणिओ कदी कदी इदां दा मन दे विच विचार आए नहीं एक गल दसां एक वारी एक वेयर हाउस दे विच मेरी नौकरी लगी डब्बे पैक करन दी मैं अज वी कल्ला सोच के हस पैना दूर दरेडे तक डब्बे डब्बे कोई बंदा ना परिंदा गल करन वाला कोई नहीं हुंदा अज वी मैं इह सोच के हस पैना कि उदों मैं डब्बियां नाल ही बड़ियां गल्लां कीतियां उदों उही मैनूं साथी लगदे हुंदे सी नाले मठे मठे जे गाने बोलदे रहना नाले काम करी जाना पता ही नहीं लगता कित्थे रब रब करदिआं दिन लंघ जांदा आ वेखो बाहर वल मारो ध्यान किन्नी खूबसूरत दुनिया किन्ने रंग बिरंगे लोक है सारा दिन भला इहो ही थोड़ी टक्करने आ ते बाकी आ रह गईआं सड़कां मारतां आ लाइटां वाले इन्हां वल ते कदी मेरा ध्यान ही नहीं गया सच पुछो तो बड़ी वधिया चल रही है जिंदगी इन्हें नूं गल्लां करदिआं साडा भी स्टॉप आ गया दिमाग जिद्दां सुन्न जिहा हो गया यार ये ड्राइवर जिंदगी नूं एक नवीं दशा दे गया ये दिशा वल तो मैं कदे सोचा नहीं जां फिर बड़ा चिर पहला सोचते होंगे ही इदा का हूँ तो कमां कारां दे विच इहो जिहे लताड़े गए हाँ हर एक चीज़ दे विच बोरियत आ गई है पता नहीं इदा की क्यों जिंदगी बना ली अपनी कल रात तो लैके हूँ तक का सारा सीन दिमाग दे विच घूमी जाता भावें कि कोल वधेरे समां सी फिर भी इदा क्यों लगी जाता जिमें मैं होर कॉल कर लेनी चाहिए है जिदा घंटा मैं खराब कर दिता हो हालांकि वह भी मेरे हाथ दे विच किते ये मैं अपने सुभा का हिस्सा तो नहीं बना लिया कई बार आप वेले रह के भी नहीं बोर होंगे तो जिंदगी दे विच बहुत कुछ करन दे उत्ते भी कई बार बोर हो ही जाने तो शायद यही चीज़ा आप अगे अपने बच्चों भी पाती वो भी गल गल उत्ते कहिंदे रहिंदे आ मैं इहदे तों बोर हो गया मैं उहदे तों बोर हो गया पर अज जो आ ड्राइवर वीर दस गया ना गल बड़ी पते दी है ते हुण नाल दे साथी दा वी धन्नवाद करन नूं जी कर दिंदा उह जे ना हिला करदा ते भज के आपां बस ते चढ़ देना जिंदगी दे विच हमेशा शॉर्टकट आपां लै ते सकदे आ थोड़ा थोड़ा समा आपां इधरों उधरों बचा ते जरूर सकदे आ पर उस सफर दे विच हो सकदा सानूं उह सिख्या ना मिले जिहड़ी सानूं ठहराव दे विच मिलनी है जिंदगी दे विच इह जिहड़ा 10 मिंट दा ठहराव आया ना उह बस दे विच बह के जो गल्लां बातां होईआं जो जिंदगी ने अज सबक दित्ता उह ते वाकई कल चों नहीं सी मिलना वैसे वेख्या जावे तो जो जो चीज़ सानू बोर करती है वो कदी पुरानी साढ़े सुभा का हिस्सा तो नहीं होंगी ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਰਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਭੇਜਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਸ ਭੱਜ ਨੱਠਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਨੱਠਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੱਜ ਨੱਠ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਤਲਖੀ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗਲਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗ ਆਪਾਂ ਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੋਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਣਾਈ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੁੱਖ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਦੱਸਦਾ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੁੱਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪ ਤਾਂ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ? ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ? ਕੀ ਇਸ ਭੱਜ ਨੱਠ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ? ਕੀ ਇਸ ਭੱਜ ਨੱਠ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ? ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਠਹਿਰਾਅ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ। ਗੱਲ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਿਕਾ ਨਿਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਸ਼ੈ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਖਲੋਤੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੱਖਰਾ।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: रेडियो हां जी 1674 AM।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो।
3: सत श्री अकाल शुभोय बादशाह, ते तुसी सुन रहे हैं 1674 AM रेडियो। हां जी।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: हाय, दिस इज उमंग कुमार और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। कीप लिसनिंग।

0: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
1: देखो सच बता दो,
2: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
0: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधु। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
3: जवाब हमेशा चढ़दी कला च दित्ता।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, this is Imran Hashmi and you're listening to me on Radio Haji।

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नु होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउन दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्टी लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
3: हाँ जी मैं मोनिका और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो हाँ जी 167।

0: is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: और जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर? हैरी स्पार्क वाल जाना। तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो।
4: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स टंच विच वी तुहाडी सेवा विच।